0: सुंदा वसुदेव का हृदय माता चिंता पड़ो धर्म जुन व्यवहार का चीज थी एक एक नाशियो
1: साजन दशा दाजो भाई मो नाम

फिर भी गंगा माया बुढ़ा सखी का आवाज में पगे को निके मीठो लोकप्रिय श्लोक सुन्न भाई वहां आज यह धरती में हूं वहां को आवाज हमी संगे वहां को आत्मा को चीर शांति को कामना करो श्रोता हम प्यारो जन्मभूमि हम प्यारो संस्कृति हम भूगोल यहां का कला साहित्य संस्कृति में हम जीवन है मानस समाज को अटूट संबंध और नाता नहीं देश भक्ति है आपू जन्म को माटो सब प्यारो लग आपो संस्कार संस्कृति सब का प्रिय हो देश को मायालाई नहीं देशभक्ति देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम होने गई मानस जो समाज में उर्कन्छ बढ़ बांच समाज को संस्कृति उत्सव हुर्कदी आमी दिया मौलाई दिया ये ये संस्कार संस्कृति हुर्का बढ़ाते संरक्षण करते लिया हमारा ज्येष्ठ जनहर ने संगसंगे गलाहरूलाई संगसंगे बोके आए ये कला और गला ने भर दोलखा सुनखानी निवासी भगवती शिवाकुटी रहाक बैनी दोलखा मेलुंग पवोटी निवासी लक्ष्मी विमली के आवाज में रहकर यह मेसो मीठो श्लोक तपाईं सामु संप्रेषण गर्दै छु।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रसैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

व्याप्तेन सराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

सामुदायिक विभिन्न महीने में धोपलो सात में आर्थ बाटो मोहब्बत प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संबत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी सन 2026 जून 5 तारीख ज्येष्ठ 22 गते शुक्रवार पंचमी तिथि अब स्तुति करूं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को।

अरे पर्वत फिर तराई हरू सब नेपाली देशी तलाक भैंसी का सही बोला मोदी न गए हरम कुमारी छोरी भैया बात कर।